0: पाकिस्तानी फौज का कहना है कि उसने 96 घंटों तक जारी रहने वाले सिक्योरिटी ऑपरेशंस के दौरान जनूब मगरबी बलूचिस्तान में 71 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। इस्लामाबाद ने कहा कि इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान और भारत की पुश्त पनाही और सरपरस्ती हासिल थी। फौज का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान असलहा, गोरा बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। काबुल और नई दहली ने इन इल्ज़ाम पर अभी तक कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। दूसरी जानब अफगानिस्तान का कहना है कि उसकी अफवाज ने सूबा नूरिस्तान में 28 दहशतगर्दों को हलाक और 32 को जख्मी कर दिया है। काबुल ने इल्ज़ाम लगाया कि यह दहशतगर्द दाश के कारिंदे थे जो पाकिस्तान से सरहद पार करके आए थे। इस्लामाबाद ने इस दावे को लगू, बेबुनियाद और सच्चाई से आरी करार देकर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ने नूरिस्तान में होने वाली झड़पों में किसी भी किस्म की शमूलियत या दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत की भी तरदीद की है।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उस वक्त ईरान के साथ मजीद बातचीत की तवक्को रखते हैं, लेकिन उन्होंने वाज़ किया तेहरान अभी तक काबिल कबूल शराइत पेश नहीं की। उनका कहना था ईरान ने अपने हद से बढ़कर पत्ते खेले हैं। ट्रंप ने अमरीकी न्यूज इदारे एक्सियोस को जोर देते हुए कहा कि दोबारा फौजी हमले शुरू करने का ऑप्शन अब भी फाल है। अफगानिस्तान में अमरीकी सफीर माइक वाट्स ने अपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की ईरान की तजवीज़ को सियासी चाल करार देते हुए अक्सर मुस्तरद कर दिया। ईरान ने इसके बदले में अपने मुंजमद सासों की बहाली, तेल की पाबंदियों के खात्मे, अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया था। वाट्स ने कहा अमरीकी सदर ने इस तजवीज़ को इसलिए मुस्तरद कर दिया क्योंकि ईरानी रहनुमा एक मुहताज चाहते हैं, क्योंकि वो बुरी तरह शिकस्त खा रहे हैं।
0: बताया गया है कि ईरान का अमरीका के साथ कोई मुज़ाकराती मनसूबा मौजूद नहीं है। ईरान की सरकारी खबरसा एजेंसी इरना ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले ईरानी वफद के एक अहलकार का हवाला देते हुए इत्तला दी है कि इस वक्त अमरीका में मौजूद वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बाकायदा तयशुदा मुलाकातें मुकम्मल करने के बाद मंगल को ईरान वापस लौटेंगे और अमरीका के साथ किसी नौयत का मुज़ाकराती मनसूबा मौजूद नहीं है। खबर में यह भी कहा गया है कि कतर की सालिसी के जरिए ईरान की तरफ से अमेरिका को पहुंचाए गए शराइत के बारे में अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ और उसका इंतजार किया जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान की जानब से अपने हुर्मुज में आब्दोरफ्त के लिए पेश करदा शराइत को मुस्तरद कर दिया है और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि वो इस हफ्ते ईरान के साथ मुजाकरात के नए दौर की तवक्को रखते हैं।
1: इसराइल वज़ीर बराए कौमी सलामती इतमार बेन गवीन ने अज़म ज़ाहिर किया है कि अगर उन्हें वज़ीर दफा मुकर्रर किया गया तो फ़िलिस्तीनी कैदियों को सज़ाए मौत देने के लिए वो दबाव डालेंगे और गज़ा मकबूज़ा मग़रिबी किनारे से फ़िलिस्तीनी की बेदखली के अमल को तेज़ कर देंगे। बेन गवीन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो फ़िलिस्तीनी कैदी हसन सलामा के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। हसन सलामा 1996 से ज़ेर हिरासत था। 1990 की दहाई में उन्हें बंद बम धमाकों के जुर्म में उम्र कैद की मुतद सज़ाएँ काट रहे हैं, जिनके बारे में इसराइल का कहना है दर्जनों इसराइली हलाक और जख्मी हुए थे। बिन कवी ने इस्लामाबाद से कहा कि मैं तुम्हें सजाए मौत देना चाहता हूं। उन्होंने कहा इस बात को यकीनी बनाएंगे फलस्तीनी कैदियों को सजाए मौत का सामना करना पड़े, जबकि वो नामनहाद रजाकाराना हिजरत को भी फरोग देंगे, जिसका मकसद फलस्तीनियों को गजा मकबूजा मगरबी किनारे से बाहर निकालना है।
0: गजा में 2 साल से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली बमबारी के बाद जदीद तारीख की अजीम तरीन सफाई की कार्रवाइयाँ जारी हैं। गजा में जमा होने वाला 61 मिलियन टन मलबा इमदादी टीमों और मकामी आबादी के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। अक़वामे मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक गजा में मलबे की कुल मकदार गुज़िश्ता 18 सालों में दुनिया भर में होने वाली तमाम जंगों से होने वाली तबाही से तकरीबन 20 गुना ज़्यादा है। अक़वामे मुत्तहिदा और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की टीमें मलबे में से अपना रास्ता बनाने के लिए शदीद गर्मी, महदूद आलात और तबाह शुदा इंफ्रास्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ नबर्द आजमा हैं। माहरीन ने पेशगोई की है कि गजा के तमाम तर मलबे को हटाने में 7 से 10 साल लग सकते हैं और इस पर अरबों डॉलर लागत आएगी। न सिर्फ फिजिकल हालात की वजह से बल्कि जानलेवा खतरात की वजह से भी काम बहुत सुस्त रफ्तारी से जारी है। अगरचे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि तकरीबन 10,000 लाशें अब भी मलबे के नीचे हैं, ना फटने वाले गोला बारूद और जहरीले मादे सफाई के इलाकों में एक बड़ा ख़तरा भी है। इसराइली हुकाम की तरफ से सामान और स्पेयर पार्ट्स के दाखिले पर आयद पाबंदियों के बावजूद टीमें सड़कों को साफ करने और इंसानी इमदाद के गुजरने की इजाज़त देने के लिए स्क्रैप कंक्रीट को तोड़कर रिसाइकिल कर रही है।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इलाके हुकाम ने ऐलान किया है यूक्रेन के दारुक में केव को निशाना बनाने रूसी ड्रोन हमलों में कम अज कम 3 अफराद हलाक और 10 से ज्यादा जख्मी हो गए, जबकि मास्को ने मुल्क भर में

0: वसीफ फजाई जारहे शुरू करती है। कीव के इलाके प्रोसिक्यूटर ऑफिस के मुताबिक हमला सूफी वस्का बोश शजाहू का नामी कहूँ के मकामी बाजार पर हुआ, जबकि दीगर ड्रोन हमलों से सिविलियन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दारकुमत के इलाके में तजारती गोदामों दफ्तरी इमारतों में शदीद आग भड़क उठी। यूक्रेनी सदर वलादिमीर ज़ेलेंस्की ने इंकशाफ किया है कि रूसी फौज ने हफ्ते के रोज से अब तक मुख्तलिफ मॉडल्स के 277 हमलावर ड्रोन दागे हैं, जिससे मुल्क भर में सिविलियन बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक ऐसी इमारत भी शामिल जो सऊदी अरब के सफीर की सरकारी रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल होती थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा एक बयान में ज़ेलेंस्की ने कहा कि इसमें ड्रोन हमलों की असलाह में किंडरगार्टन, स्कूलों, रिहायशी मकान, कारियों की मरम्मत की दुकानों और मुस्त इंतजाम के बुनियादी ढांचे को तबाह करती है। लावा से मजीद हमले देनपोरों में एक स्पोर्ट्स स्कूल और सोमी के इलाके में बच्चों के यतीम खाने पर भी किए गए। ज़ेलेंस्की ने कहा ऐसा करने के पीछे रूस का कोई फौजी मकसद नहीं है, खालिस्तन लोगों के हौसले तोड़ने हमारे माशरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने मास्को की जान हाल ही में की जाने सफारती पेशकशों को मुस्तरद करते हुए दलील दी, ये सिर्फ फैसला कुन बैन अवी इकदाम को रोकने के लिए तैयार की गई हैं।
1: पोलैंड के वजीर खारजा रादस्लाव सिकोर्स्की का कहना है कि जब तक उसकी फौज यूक्रेन में मसरूफ है, रूस के पास नेटो पर किसी बड़े हमले की गुंजाइश नहीं है। सरकारी नशरियाती इदारे टीवीपी इन्फो से बात करते हुए सिकोर्स्की ने अपने गुज़िश्ता हफ्ते के इसी इंतबाह की वजाहत की कि वारसो के पास मुदाता जराए से मालूमात हैं, जिनसे जाहिर होता है कि रूस इस साल कोई बड़ी मनसूबाबंदी कर रहा है। मास्को के मंसूबे किस शक्ल के हो सकते हैं, सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह सिर्फ पुतिन ही जानता है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए और हमें होशियार भी रहना चाहिए ताकि एक इत्तेहाद के तौर पर हम किसी भी इश्तियाल अंगेजी का फौरी तौर पर जवाब दे सकें। उन्होंने कहा कि रूस के पास नेटो पर बड़े हमले के लिए फोर्सेज नहीं है, क्योंकि उसकी तमाम अफवाज यूक्रेन में जकड़ी हुई हैं। सिकोर्स्की ने इशारा किया कि मास्को मुमकिन तौर पर छोटे पैमाने पर कुछ कर सकता है जिससे इत्तेहादियों के दरमियान तनाज़ा पैदा हो। सिक्योरिटी ने मजीद कहा कि कोई ऐसा वाकया जो यूरोपीय और अमरीकी अरकान को इस बात पर तकसीम कर दे कि आया नेटो के आर्टिकल 5 की मुश्तरका दिफाई शक लागू होती है या नहीं, क्रेमलिन के मफाद में होगा। मुमकिन है कि रूस जो कुछ वो पहले से कर रहा है उसे मजीद जारहाना अंदाज में करे। मगरबी हुकूमतों ने मास्को पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो नेटो और यूरोपीय यूनियन के ममालिक के खिलाफ हाइब्रिड जंग के एक हिस्से के तौर पर तबाहकारी और फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जियों पर मबनी मुहिम चला रहा है।
0: हुकाम ने बताया भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में कई रोज की मूसलाधार बारिश और सैलाब के बाद कम अज कम 62 अफराद हलाक हो गए। रियासती हुकूमत ने पीर को कहा 3 रोज की शदीद बारिशों से कई अजला जेरे आब आ गए, जिसके नतीजे में 46 अफराद जख्मी हुए और 1000 से ज्यादा मकाना को नुकसान पहुंचा। रियासती हुकूमत लखनऊ समेत बाज़ इलाकों में पीर को स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि रेस्क्यू टीमों ने सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। लखनऊ के इलाके मौसमियात मरकज के साइंसदान ने कहा है कि खलीज बंगाल पर मौजूद मौसमी निज़ाम कमजोर होने के बायस पीर से बारिश में कमी आने की तवक्को है। सैलाब ने मशरक की रियासत ओडिशा को मुतासर किया, जहां हुकाम के मुताबिक 75,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। इस रियासत के पड़ोस में वाक़ नेपाल में मुल्क की आफत मैनेजमेंट एजेंसी ने बताया जुमेरात से इतवार तक मौसमी वाकमात के बायस 21 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए हैं।
1: थाईलैंड के दारुलहुकूमत बैंकॉक में शदीद बारिशों के बायस आने वाले सैलाब से तकरीबन 7 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। पूरे शहर में 1000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और बैंकॉक बल्दिया ने शहर के तमाम 50 अजला को आफतज़दा इलाके करार दिया है। बैंकॉक में जहां 24 सितंबर से खलीज थाईलैंड से आने वाले कम दबाव के निज़ाम की वजह से 320 किलोग्राम फी मुरबा मीटर बारिश हुई है, वहीं बहुत से मोहल्ले बिलखसूस शहर के मशरकी इलाकों में सैलाब आया है। हुकाम ने ऐलान किया कि रिहायशी इलाकों से पानी की निकासी के लिए नशीबी इलाकों में पंप लगाए गए हैं और इंसानी इमदाद की अपील करते हुए पीने के साफ पानी और खुराक की अशद ज़रूरत होने पर जोर दिया है।
0: दो पाकिस्तानी पायलट सेंट्रीफ्यूज मशकों में हिस्सा ले रहे हैं, कश्य शक्ल के बगैर खाने सोने और साजोसामान ठीक करने की तरबियत हासिल कर रहे हैं, जबकि कौन चीन के त्यांगोंग खलाई स्टेशन पर पहला गैर मुल्की खला नवर्त बनेगा इसका फैसला होना है। यह खलाई सफर जनूबी एशिया मुल्क के लिए अपनी नौत का पहला सफर होगा। बीजिंग के साथ वसी ताउन का हिस्सा है, जिसमें मुश्तरक सेटेलाइट नेविगेशन निज़ाम एक पाकिस्तानी साख्ता रोवर भी शामिल है, जो अंदाजन 2028 का करीब चीन के चांग E8 चांद मिशन में भेजा जाएगा। आमिर किलान जो पाकिस्तान के खलाई एजेंसी पार्कों में इंसानी खलाई प्रवास के ताउन की निगरानी करते हैं ने कहा पायलट्स जिशान अली और खुरम दाऊद ने इस मिशन की तैयारी के लिए कई माह बीजिंग के चाइना एस्ट्रोनॉट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत हासिल किया, जिसका तसव्वुर दोनों मालिक ने 2019 में किया था। चीन ने यह नहीं बताया दोनों में से कौन कब प्रवास करेगा, मगर गिलानी ने कहा खत्मी खलावर्त के इंतहाब का फैसला अक्टूबर के वस से अवाखिर तक मुतवक्को है।
1: तुर्की ने एक नया कौमी मस्नूई ज़हानत प्लेटफॉर्म एवरिन मुतारिफ करवाया है, जिसका मकसद मुल्क की दिफाई सनत और उसके वसी तर टेक्नोलॉजी के शोबे को मजबूत बनाना है। ये प्लेटफॉर्म दिफाई फर्मों, टेक्नोलॉजी कंपनियों, माहरीन तालीम, कारोबारी शख्सियात और तलबा के लिए डेटा, AI मॉडल्स और आला कारकर्दगी वाली कंप्यूटिंग को एक ही जगह पर इकट्ठा करता है। हसास डेटा की प्रोसेसिंग खुद तुर्की के अंदर मौजूद ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के बुनियादी ढांचे पर की जाती है, ताकि इसे कभी भी गैर मुल्की क्लाउड सर्विसेज पर ना भेजा जाए। एवरन शराकत दारी पर मबनी क्रेडिट मॉडल पर भी काम करता है। सार्फिन डेटा सेट्स अपलोड करके, डेटा की दर्जा बंदी करके या दूसरों के साथ अपने तैयार करदा मॉडल शेयर करके क्रेडिट कमा सकते हैं। अब तक ये प्लेटफॉर्म 7,500 फाल सार्फिन तक पहुँच चुका है। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुई।

सामिन, क्या वक्त और जगह के बारे में आपका तस्वुर कभी बदला है? क्या कोई चीज़ आपको मानूस और अजनबी मालूम हुई? क्या आपने कभी महसूस किया कि आप माजी में थे, हालांकि आप जानते थे कि आप हाल ही में रह रहे हैं? ये एक शाम आप पर किसी दूसरे मुल्क की रोशनियाँ जगमगा उठी। क्या आप कभी सड़क पर चलते हुए घर के किचन या लॉन्ग रूम के नीचे से गुजरे हैं? हो सकता है कि यह सब किसी फिल्म के मंजर की तरह लगे, लेकिन अनातोलिया में एक शहर है जो आपको मुख्तलिफ औकात और मकामात पर ले जाता है।

मार्डिन के दरवाजे बहुत से हैरतों के लिए खुलते हैं, जिनमें गलियों की भूल भुलैया एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। घरों के कमरे जो इन गलियों में पुल बनते हैं, वो अकायद जो आपने पहले नहीं सुने होंगे, और शहर के परदेशियों के लिए बहुत सी ऐसी हैरत अंगेज बातें भी हैं।